0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिल पड़ी हिला तुझे कपाली लाठीला आगो हिल हिल पड़ी हिला तुझे कपाली लाठीला तुझे कपाली लाठीला

जी गुल्ला बाजे बुला माजे गुल्ला।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में

0: प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7-सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल

0: में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपने ट्यूनिंग किया है 107.1 FM रेनबो और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई में आपका मनमीत RJ अमित को, जो आप सभी का साथी बना रहेगा ठीक 11 बजे तक, पहले मस्त मुंबई में और फिर नमस्ते भारत में। तो आप हमारे संग जुड़े रहना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं ना, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा आप सभी को, और आज की ये सुबह है बहुत रंगीन बनाने के लिए आशा भोसले की आवाज में सजा ये गाना आप सभी को मैं डेडिकेट कर रहा हूं। लेट्स से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। 8:45 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, यह कार्यक्रम आपका मन मीदार जामिद के संग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। वैसे 10 जुलाई काफ़ी अहम तारीख, मगर मस्त मुंबई में कभी कभी हम इतिहास के पन्नों को जब खोलते हैं तब कुछ यादें याद आ जाती हैं। पता है, अक्सर हम 1857 की क्रांति को भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, मगर उससे भी 51 साल पहले 10 जुलाई 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर किले में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। और वजह पता है क्या थी? अंग्रेजों का अपमानजनक ड्रेस कोड, जिसने सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई थी। भारतीय सिपाहियों ने किले पर कब्जा कर टीपू सुल्तान के बेटे को जो राजा घोषित किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया था। इतिहास इसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से याद करता है, एक ऐसी चिंगारी जिसने आजादी की लड़ाई की नींव मजबूत की थी। आज तक ये बात हमें याद आती है और इतिहास में कई सारी बातें बतला जाती हैं। हम चाहते हैं ऐसी कई कहानियां हम आप सभी से बांटते रहेंगे, बस आप हमारे संग बने रहना, क्योंकि हम तो आपके आशिक हैं भैया। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे, और हम जब भी एफएम पर आएंगे आप हमारे साथ रहेंगे, है ना? बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, अब हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग। सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

चाहे आप मानो या ना मानो, मगर हमारे संग बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं भाई। प्रदीप अनंत कृष्णन हो, या फिर हमें मैसेज करने वाले रोहा रायगढ़ के मंगेश जोशी जी हो, या पंडरपुर से हमें सुनने वाले ओंकार काटकर जी हो, फिरोज सिकांतपुरिया, दिलीप पाटिल, पंकज मोहड, दत्तात्रेय आजाद वेलापुर से, दीपा पालकर जी, प्रमोद चिंजोलकर, रजनीकांत पाटिल, प्रणव शिंदे, स्मिता लिंगे जी, और भी कई सारे लोग हमें कुछ ऐसे कदर मैसेज कर रहे हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा है। बस हमारे संग बने रहना और बताएंगे बहुत ही जबरदस्त बातें कुछ ही देर में। तब तक किशोर कुमार की आवाज में ये रोमांटिक नगमा आप सभी के लिए आर्जमित की ओर से।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
0: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
0: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
0: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
0: कॉस्मोस रूपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मस्त मुंबई इस शो को अब हम 9 बजे के उस पार ले गए हैं। मैं हूं आरजे अमित और हमारे संग जुड़े हैं कई सारे हमारे श्रोता जो कि 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमें मैसेजेस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह वो हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं, गानों के साथ साथ बातों को भी। अब देखिए, हम तो आपको एक ऐसी क्वीज की ओर ले जाना चाहेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यार अब हम एक गायिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी गायिका है, आप हमें बताएं, ऐसी कौन सी गायिका है जो महज 26 साल की उम्र में पद्मश्री प्राप्त करती है। जल्दी बताइए 8657661071 पर। आपके मैसेज का मैं इंतजार कर रहा हूं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
2: कितनी खुशी की बात होती है, कोई सवाल हम पूछ लेते हैं और तुरंत हमारे जवाब देने वाले जितने सारे श्रोता है वो तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हमारे श्रोता कितने जानकार हैं। प्रदीप अनंत कृष्णम बताते हैं कि हाँ, वो 26 साल में पद्मश्री पाने वाली फीमेल सिंगर बेगम परवीन सुल्ताना है। सही फरमाया जी। पंकज मोहट जी ने भी सही जवाब दिया है, दत्तात्रेय आदत ने भी सही जवाब दिया है और हमारे बाकी सारे साथी हैं उनके जवाब थोड़े से गलत हैं, बट फिलहाल राकेश माथुर जी भी सही जवाब दे रहे हैं और हमारे संग जुड़ने वाले बाकी सारे जितने श्रोता है उनमें कुछ नाम जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। चंद्रशेखर मेश्राम जी और चंद्रकांत जी, फिरोज सिगानपुरिया जी, विजेंद्र घटोल जी।

और प्रमोद कारखानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ वासुदेवन बदलापुर से हमें मैसेज करते हैं। इन सभी के साथ एक और नाम भी जुड़ रहा है, महेश भाटकर जी और चंद्रकांत बोके फोड़े, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, इतने सारे नाम अगर जुड़ जाते हैं तो हमें खुशी इस बात की होती है कि यार किस तरह ये प्रोग्राम आगे जाएगा। समय नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं होता ना, बस घड़ी की टिक टिक आगे आगे बढ़ती रहती है और हमें बतलाती है भाई अब अगले गाने सुनाने का वक्त आ गया है। तो चलो अगले गीत की ओर आप सभी को लिए चलते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, ऐसी बेगम परवीन सुल्ताना को हम याद करेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान गायिका को जब पंचमदा अपने संगीत में अनोखे अंदाज में गंवाते हैं तो उनकी अपनी अद्भुत आवाज, ऊंचे सुर, बेहतरीन पकड़ और पटियाला घराने की परंपरा, वो जो गायकी में बयां होती हैं, वो आज तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही हैं और हमसे कह रही हैं

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

आपको पता है पहली बार टेस्ट में 10,000 रन पूरा करना ये कोई आसान बात नहीं थी, मगर ये जिन्होंने कर दिखाया वो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे सुनील गावस्कर, भारत के एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे जबरदस्त बल्लेबाज जो कि सलामी बल्लेबाजों के रूप में आज तक हम सभी को याद आते हैं। 34 टेस्ट शतक किए इन्होंने, 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले टेस्ट बल्लेबाज बने, पद्मश्री, पद्म भूषण इन जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हमारे सुनील गावस्कर जी को FM रेनबो की टीम की ओर से मैं आर जमित दे रहा हूँ जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक और जबरदस्त गाना आप सभी के लिए और उसके बाद हम कहना चाहेंगे तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनेंगे ये गाना, बने रहना मस्त मुंबई में आपका मनमीत आरजे अमित के साथ।

0: सच में तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं। ये मेरा कहने का मन कर रहा है, पता है किसके लिए?
1: इन्हीं केसेस?
0: अरे यार, हमारी महिला क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, क्योंकि लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आज पहली बार महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच ये जो 4 दिवसीय मुकाबला है ना, वो ऐतिहासिक माना जा रहा है। मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ और ईगली एक्साइट कर रहा हूँ कि यार कब कब कब मैं देखूँ यार, ये कब शुरू हो जाएगा, है ना। भारत और इंग्लैंड का ये जो सामना होने वाला है, उसमें अमोल मजुमदार जो कि कोच है ना, वो इसमें बताते हैं कि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि लॉर्ड्स में अगर जीत हमने दर्ज की तो इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और 4 अगस्त 1976 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था।

तो वो भी जो बातें हैं वो हमें पहुंचनी है। साथ ही साथ हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड में जाकर ऑलरेडी 3-0 से पीछे हैं T20 में। तो हम चाहते हैं ये महिलाएं जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान का परचम लहराते रखें और बताएं हमें, यार यार आंचल छोड़ दो, जमाना क्या कहेगा, अब हमने हाथ में बैट जो थामी है। सुनते रहना मस्त मुंबई कार्यक्रम आपका मन विदार जमित के संग FM रेनबो पर।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणीच्या कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी अंतर्गत कार्यक्रम निर्माते आणि निर्मिती संस्थांकडून सर्जनशील आणि दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत। अधिक माहितीसाठी https://prasarbharati.gov.in/NIPP या वेबसाईटला भेट द्यावी। शेवटची तारीख आहे 31 जुलै 2026।
4: FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
5: दोस्तों, आज वैसे आलोक नाथ जी भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1921 में ही उनका जन्म हुआ था। ऐसे एक्टर रहे आलोक नाथ जी, जिन्होंने कई स्नेही किरदारों से संस्कारी बाप के रूप में कई रोल निभाए। आज भी उनका किरदार याद आने के बाद हमें हम दिल दे चुके सनम, हम आपका है कौन, या ऐसी कई सारी फिल्में याद आ जाती है ना। हम चाहेंगे उन्हें भी हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दें। मगर आज लॉर्ड्स में भारत महिला टीम टेस्ट खेलने के लिए तैयार है, मगर 1986 को अगर हम याद करें तो भारत ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था और पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। कप्तान कपिल देव थे तब हमारे, और उन्हीं की अगुवाई में मिली हुई ये ऐतिहासिक जीत जो है वो भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास और नई पहचान का प्रतीक बनी थी। इसीलिए आज का दिन हर क्रिकेट प्रेमी को जरूर याद रहेगा। हम चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिमान का ये गाना सुने, और उसके बाद बताऊंगा सौरव गांगुली को बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट क्या मिला।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
0: कितनी खुशी की बात होती है ना जब हमें हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए एक ऐसा इनाम मिले जो इनाम इतिहास में दर्ज हो जाए। कुछ ऐसी बात हुई है सौरव गांगुली के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और इसी मौके पर भारतीय क्रिकेट के कई सारे बड़े नामों ने उन्हें बधाई तो दी है। पता है इसमें और कई सारे नाम शामिल है, इससे पहले सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड, डायना रूलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड, एमएस धोनी और उनके बाद गांगुली का नाम उसमें दर्ज हो चुका है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे कई सारे श्रोता भी यही बात हमारे संग बांटते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है। हमारे संग जुड़ने वाले श्रोताओं में और कुछ नाम यहाँ पर शरीक हो चुके हैं तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। जिसमें हमें मैसेज करने वाले मंगेश जोशी जी हैं रायगढ़ से, साथ ही वासुदेव बदलापुर से हैं, सुनील गायकवाड़ जी हैं, सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या, ये पूरी फैमिली हमें पुणे से सुन रही, थैंक यू सो मच। पुण्यात पाउस कसा है नक्की सांगा। श्रीधर मोरजकर जी हमारे संग हैं, रजनीकांत पाटिल जी हैं वाधवन से, पंकज मोहोड़, प्रतिभानंद कृष्णन और साथ ही साथ सोलापुर से चंद्रकांत जी हमें सुन रहे हैं, दीपाली शिरोडकर हैं, श्रेय राउत हैं और भी पंढरपुर से हमें एक बंदा मैसेज करता है ओंकार काटकर। पंढरपुर में फिलहाल हर कोई विट्ठल महाराज के दर्शन लेने के लिए बड़े इत्मीनान से और बड़ी ही चाव से पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कई सारी पालखी जो है वो यात्रा के रूप में वारकरियों के साथ सजी हुई हैं और हमें खुशी है कि आप पंढरपुर में रहते हैं तो आप बड़े लकी हो कि आप हर दिन विट्ठल महाराज के दर्शन जरूर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज यही माहौल जो है वो आगे बढ़ाते हैं। राकेश माथुर जी हमारे संग, प्रमोद कारखानी से, विजेंद्र घटोल, फिरोज सिगानपुरिया और गढ़चिरौली से हमें मैसेज करते हैं, चंद्रशेखर मिश्राम जी, विक्रम आठवले जी हैं, दिलीप पाटिल, दीपा पालकर, स्मिता लिंगे, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। याद रहे कि इस घंटे के बाद यानी 10 बजे हम समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम नमस्ते भारत में एक बहुत ही ज़बरदस्त गाँव की कहानी सुनने वाले हैं। कौन सा गाँव आज आर जमित ने चुना है जल्दी आपको पता चल जाएगा। तब तक सुनिए एक और जबरदस्त गाना।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: कभी कभी ऐसे होता है, हम अनजाने में कुछ बातें कर जाते हैं, बट दुनिया बड़ी समझदार है, दुनिया को समझ ही जाता है। अब देखिए, जान्हवी कपूर ने एक शादी में हाथों में मेहंदी रचाई। अब उनकी शादी तो है नहीं, बट फिर भी जब हम मेहंदी रचाते हैं और मेहंदी में किसी का नाम लिख देते हैं, तो भाई दुनिया को समझ ही जाता है। आप कितने भी छोटे अक्षरों में क्यों न लिखो, आपका दिल कहीं ना कहीं किसी के लिए धड़कने लगा है। ये तभी होता है जब दिन बाहर के आते हैं, और हमारे लिए तभी होता है जब आप हमारे से जुड़ते हैं। तो बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग 107.1 FM रेनबो पर।

आज अगर आपको हम बात याद दिलाए एक ऐसे शायर की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सारे यादगार गीत दिए, तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम सब उनकी गीतों के संग उनकी यादों में हो जाएंगे। कौन है वो शख्सियत? वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो लिखते हैं कि आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताए कैसे भूलेंगे हम। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आहा हा, क्या जबरदस्त लिखावट है। नाम है असद भोपाली। कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, क्या क्या अनोखी थॉट है। देखिए इस थॉट के साथ जब बीआर चोपड़ा की अफसाना फिल्म के साथ उन्होंने 5 गाने लिखकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े ब्रेक के संग खुद को साबित किया, तब लोगों ने इन पर काफ़ी भरोसा किया और कई सारे गीतों के जरिए वो अपने गीतकार के रूप में एक अलग पहचान बनाने में काफ़ी मकबूल रहे। दिल दीवाना गाना याद है आपको, जिस गाने के लिए उन्हें

फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था, लेकिन वो फिल्मफेयर पुरस्कार में उस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, वो दुख जरूर रहा। लगभग 400 गीत उन्होंने 1949 से लेकर 90 तक लिखे जरूर, मगर आज हम उन्हें याद करते हुए प्रोग्राम के आखिर में उन्होंने ही लिखे हुए एक नायाब गीत की ओर आप सभी को ले जाना चाहेंगे, जिस गीत से उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। असद भोपाली जी को शत शत नमन करते हैं, और मैं आरजे अमित मस्त मुंबई के इस आखिरी गीत को आप सभी के सामने रख रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि ठीक 10 बजे हम हिंदी में समाचार आपको सुनाएंगे, और समाचार के उस पार नमस्ते भारत में हम बढ़ेंगे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा इस सेगमेंट में ठीक 11 बजे तक। बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग FM रेनबो पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख प्रादेशिक समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक नए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को भी अपनाया। भारत को ऑस्ट्रेलिया से लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था को भी अंतिम रूप देना था। समाचार में आगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के लिए एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कल ये घोषणा की। यह समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने के विचार में है। समाचार में आगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने व्यापक जैव ईंधन नीति का बचाव करते हुए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया। समाचारों के अंत में, मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 56 मिनट के रोमांचक मैच में इस ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने टॉम हंटर और मार्क पॉलमेंस की जोड़ी को 4-6, 7-5 और 6-2 से हराया। इसके साथ ही दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अपना पहला मिक्स्ड डबल्स का मेजर और पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहदिल से स्वागत है। नमस्ते भारत, ये सेगमेंट आप सभी के लिए लाया है गोरी तेरा गांव पड़ा प्यारा, ये अनोखा विशेष कार्यक्रम जो कि हर शुक्रवार आप सुनते हैं। आज हम आपको लेकर जाएंगे राजस्थान के श्री गंगानगर में, पाकिस्तान सीमा से महज 27 किलोमीटर दूर बसे एक ऐसे अनोखे संस्थान में, जहां बच्चों की दुनिया देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। यहां खामोशी भी बोलती है, मुस्कान भी सुनाई देती है और हौसले हर सीमा को पार कर जाते हैं। आइए आइए मिलते हैं श्री जगदम्बा अंध विद्यालय से, जो राजस्थान के श्री गंगानगर में है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
4: इंटरनेट बैंकिंग,
3: मोबाइल बैंकिंग,
4: व्हाट्सएप बैंकिंग,
3: ईकेवाईसी,
4: एनईएफटी, आरटीजीएस,
3: आईएमपीएस,
4: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
3: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
5: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
6: कुछ लोगों का कहना है कि क्या जबरदस्त गाने हैं। गानों के साथ साथ हर कोई ट्रैवल करने लगा है। उन्हीं में से एक नाम है राजकुमार कुंभार सुरेल जबरगी, जो हमें मैसेज करते हैं। और भी कुछ लोग हमारे संग जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिखिए अपना नाम और आप कहां से हमें मैसेज कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। फिलहाल आरजे अमित आप सभी को गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा इस सेगमेंट में नमस्ते भारत कार्यक्रम में ले गया है राजस्थान। राजस्थान में गंगानगर नामक एक गाँव है, उस गाँव की बात आज हो रही है। आपको बताएं उस गांव की बात आज क्यों हो रही है। यहाँ पे जगदम्बा अंध विद्यालय है। इस विद्यालय की सुबह बेहद खास होती है, प्रार्थना सभा होती है, लेकिन बिना किसी शोर से, क्योंकि यहाँ कई सारे बच्चे सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी एकता, उनका अनुशासन और उनका आत्मविश्वास किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यहां खामोशी ही संवाद का सबसे खूबसूरत जरिया है, जो भाषा बन जाती है। और आज इसी संवाद के बारे में अगर हम कहेंगे तो एक बात पता चल जाती है कि ऊंची आवाज से

शायद बात कानों तक पहुंचेगी, मगर खामोशी से बात आसमान तक पहुंचती है। सुनते रहना यही कहानी, आपका मनमीत आरजे अमित के संग 107.1 FM रेनबो पर।

नजर के सामने जिगर के पास, ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी से। आज तक आशिकी की वो कई सारी यादें तरोताजा है हर किसी के मन में, मगर हम थोड़े से अलग मूड में अगर आ गए हैं तो हम चाहते हैं इस मूड में इस गांव के बारे में और थोड़ा सा जान लेना। इस गांव में जगदम्बा अंध विद्यालय जो काम करता है वो आखिर क्या करता है। देखो, इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत हुई 1980 में, जब परमहंस स्वामी ब्रह्मदेव ने एक बीघा दान में मिली जमीन पर इस सपने को आकार देना शुरू कर दिया था। शुरुआत वैसे आसान नहीं थी दोस्तों, लोग अपने दिव्यांग बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकिचाते थे, लेकिन स्वामी जी ने तब हार नहीं मानी, घर घर गए और हर किसी को जाकर समझाया, देखो यार आखिरकार आपका पहला छात्र रामकुमार इस विद्यालय में आया तो जरूर, तो उसे देख के कई सारे लोग आने लगे। आज वही रामकुमार इसी स्कूल में शिक्षक बनकर नई पीढ़ी का भविष्य संवार रहा है। देखो, कुछ ऐसा काम करो कि आपको लोग फॉलो करने लगे, कुछ ऐसा ही हो रहा है इस गांव में। आज इसी गांव की बातें हम यूं ही जारी रखेंगे, फिलहाल आपको सुनाएंगे जतिन पंडित की आवाज में गाया हुआ ये एक अनोखा गीत, जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से। सुनते रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: 10:31 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत के कार्यक्रम। और नमस्ते भारत इस कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ते हुए अब आप पहुंचे हैं एक ऐसे पड़ाव पर जिस पड़ाव में हमें पता चलेगा कि इस विद्यालय से जुड़ी हुई अन्य कई सारी खास बातें हैं जो कि हम सभी को चौंका देगी। अब दीपाली शिरोडकर, पंकज मोहोड़, दीपक दिलीप पाटिल, शिवनाथ जाखेरे, प्रदीप अनंत कृष्णन, शिवलक्ष्मी मस्तकार, राजकुमार कुंभार, प्रमोद चिंचोलकर, विजेंद्र घटोल, प्रणव शिंदे, बाबा हैदादर से और ओंकार काटकर पंढरपुर से, रोहा से हमें मैसेज कर रहे हैं, मंगेश जोशी जी, अजय साकरी जी इंदौर से मैसेज करते हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए वे जुड़े हुए हैं, सोलापुर से हमें चंद्रकांत मैसेज करते हैं, श्री मिलेश गजानन राउत माधवन से मैसेज करते हैं, रजनीकांत पाटिल हैं, श्रीधर मोरजकर हैं, महादेव पाटिल हैं, भिवंडी से सुनील गायकवाड़ हैं, और मैसेज करने वालों में अलका याग्निक जी का कोई गाना सुनाओ ऐसी रिक्वेस्ट वासुदेवन जी ने की है बदलापुर के, और साथ ही हमें मैसेज करने वाले लक्ष्मी कोइंडे जी भी हैं जो कि आज हमारे से जुड़ी हुई हैं। कुछ नए नाम देवेन सुनावने थाने से हमें मैसेज करते हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। दत्तात्रेय आदत है और महेश भाटकर जी जुड़े हुए हैं, राकेश माथुर जी हैं, प्रमोद कारखानी, फिरोज सिगानपुरिया, गढ़चिरौली से हमें चंद्रशेखर मिश्रा मैसेज करते हैं, और सुहास और सविता पवार पुणे से हमें मैसेज करते हैं, दीपा पालकर जी हैं, स्मिता लिंगे जी हैं। अब देखिए इतने सारे श्रोता, और भी कई सारे श्रोता होंगे जो शायद ट्रैवल करते होंगे, बट उनको कहना चाहूँगा देखो 8657661071 ये व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल में लाइफ टाइम सेव कर दो भैया। FM रेनबो आपसे जुड़े रहता है, और RJ अमित तो कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। तो चलो ये अगर अवसर हमने ढूंढा है तो उसे सेलिब्रेट करेंगे। इसी स्कूल के बारे में, आत्मनिर्भरता का केंद्र ये कैसे बन गया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। स्वामी ब्रह्मदेव ने जब विदेशों से संपर्क किया तब स्वीडन से ब्रेल तकनीक की जानकारी उन्होंने हासिल की। आज यहां ऑटोमेटिक ब्रेल मशीन है, बेल ATM जैसे कई आधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ यह विद्यालय है, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में आसानी होती है, और साथ ही साथ ये पढ़ाई का माध्यम प्रभावी बन गया है। तो इसकी और खूबियां कौन सी हैं जल्दी हम जान लेंगे, तब तक आपको सुनाएंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गाया।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: 10:46 होने आए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत। ये कार्यक्रम आपका मनमीत आरजे अमित के संग। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गंगानगर गांव की और उसी गांव के एक ऐसे जगदम्बा अंध विद्यालय की, जहां ये विद्यालय आत्मनिर्भरता का केंद्र बन गया है। अब देखिए यहाँ का समावेशी माहौल कैसा है। दृष्टि बाधित और मूक मधिर बच्चे हैं जो एक दूसरे की भाषा पूरी तरह समझ नहीं पाते ना, फिर भी मिलकर रामलीला मंचित करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते हैं, जीवन के हर रंग को पूरे उत्साह से जीते हैं। यहाँ अलुमनी मीट और परिचय सम्मेलन भी होते हैं, जिसके बदौलत कई सारे दिव्यांग साथी अपने जीवन साथी को भी पाकर बड़े खुश हैं। आज इस विद्यालय से पढ़कर हजारों छात्र जो हैं वो प्रशासनिक सेवाओं में लगे हैं, रेलवे में लगे हैं, बैंकिंग, शिक्षा और अन्य कई सारे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। संस्थापक परमहंस स्वामी ब्रह्मदेव को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। और श्री गंगानगर का यही विद्यालय हमें सिखाता है कि ताकत शरीर में नहीं बल्कि इरादों में होती है। यही है हमारे देश की असली पहचान और यही है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा की आज की ये प्रेरणादायक कहानी। गंगानगर के गांव की यही खुशबू हम सभी को यही बतला देती है कि जो तितलियां होती है ना, उनका जीवन महज 14-15 दिन का होता है, मगर फिर भी वो 14 दिन कुछ इस कदर जीते हैं कि हर जगह अपना रंग छोड़ाते हैं और अपनी यादों से हर किसी का जीवन और प्रभावित कर देते हैं। हम भी कुछ ऐसा ही जिए। आज हमारे संग जुड़ने वाले जितने सारे साथी हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कुछ ही पलों में 11 बज जाएंगे और 11 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार के उस पार हमारा नेक्स्ट आरजे अभिनव स्टूडियो में आ गया है, जो आपको एंटरटेन कराएगा कई गानों के साथ। फिलहाल हमारे संग जुड़ी श्रोता पूजा की ये दरख्वास्त इस गाने के साथ हम पूरी करते हैं। इसके बाद एक और गाना आएगा।

तब हम आप सभी से विदा लेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए खुश रहना, मुस्कुराते रहना, फीफा वर्ल्ड कप देखते रहना और साथ ही साथ एफएम रेनबो पर आरजे अमित का इंतजार करना। सोशल मीडिया पे एफएम रेनबो को और हमें जरूर फॉलो करना। मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।

निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

नमस्कार, और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक नए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को भी अपनाया। भारत को ऑस्ट्रेलिया से लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति के लिए यूरेनियम की प्रशासनिक व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के लिए एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कल ये घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने के विचार में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से उस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने व्यापक जैव ईंधन नीति का बचाव करते हुए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया। मार्सेलो अरेवालो और जेलेना टापेंको की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 56 मिनट के रोमांचक मैच में इस ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने स्टॉर्म हंटर और मार्क पोल मैंस की जोड़ी को 4-6, 7-5, 6-2 से हराया। इसके साथ ही दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अपना पहला मिक्स्ड डबल्स का मेजर और पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: इसी म्यूजिकली योर्स पर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अवरव। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। लेकर आया हूं आप लोगों के पास ब्रेक फ्री यानी कि ब्रेक फ्री म्यूजिक जहां पर रहता है बीच बीच हम लोगों की बातें भी होंगी। कैसे हैं आप सब लोग? हाजिर हूं यहां पर 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। बस शुरू हो चुका है आपका फेवरेट शो ब्रेक फ्री। आता रहूंगा आप लोगों के पास बीच बीच में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ब्रेक लेकर। आज करेंगे हम कुछ और भी बातें आप लोगों के साथ। पहले पेश करता हूं ये एक गीत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: इसी म्यूजिकली और सॉन्ग बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे बना हूँ। जी हाँ हाँ, कुछ कुछ गीत आप लोगों के हिसाब से भी लाऊंगा पूछने के लिए और बताने के लिए और पता करने के लिए। जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, टेंशन को कीजिए साइड, क्योंकि अब शुरू हो चुका है ब्रेक फ्री। और भाई आज तो बारिश भी बंद हो गई, आज तो अच्छी खासी चलचलाती है, धूप निकल रही है। हालांकि मुझे मालूम है कि बारिश होगी इसके बाद, और ऐसे मौसम में कि जब बारिश भी हो धूप भी हो तो कितना मिला जुला मौसम हो जाता है ना, बड़ा प्यारा सा। आज जब आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि आपसे इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ होंगे अब आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प बातें और भरपूर पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले।

अंदर गीत से, जो कि हो चुका था और गाना आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। याद रखिए, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। बस उसी अच्छाई को ढूंढना है और मुस्कुराते रहना है।

0: आकाशवाणीच्या कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी अंतर्गत कार्यक्रम निर्माते आणि निर्मिती संस्थांकडून सर्जनशील आणि दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी https://prasarbharati.gov.in/NIPP या वेबसाईटला भेट द्यावी. शेवटची तारीख आहे 31 जुलै 2026.
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं. अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/NIPP वेबसाइट पर जाएं. प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
3: बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर इस ब्रेक फ्री म्यूजिक में। ब्रेक फ्री का मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम ही नॉन स्टॉप म्यूजिक चलेगा। ब्रेक फ्री का मतलब है कि ब्रेक फ्री म्यूजिक रहेगा, लेकिन मेरे साथ प्यारी प्यारी सी बातें भी रहेंगी। कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको शो और कैसा है आज आपका मूड? आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री। काम के बीच 2 मिनट खुद के लिए भी निकालिए, काम करते रहिए, म्यूजिक भी सुनते रहिए, एक गिलास पानी पीजिए और गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, आई एम वेरी वेल एंड आई एम बेस्ट। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। किसी अपने को एक मैसेज भेज दीजिए कि किसी की तारीफ कर दीजिए, यकीन मानिए दिन और भी खूबसूरत हो जाएगा।

आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। इसी म्यूजिकल योर्स वो ब्रेक फ्री में आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव। अगर आप ऑफिस में हैं और सफर में हैं या घर पर हैं, जहां भी हैं हमारे साथ जुड़े रहिए। संगीत का साथ हो तो हर काम थोड़ा सा आसान लगने लगता है। और इसी के साथ ब्रेक फ्री में और भी बहुत सारी बातें करूंगा आप लोगों से। हम अपने बच्चों को हर चीज़ देना चाहते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, महंगे खिलौने, लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वो है, हम अक्सर उन्हें हम वो दे नहीं पाते, वो है हमारा वक्त, हमारी प्रेजेंस। बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना, उनके साथ खेलना, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना, ये उनकी नींव बनाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिन बच्चों को बचपन में माता पिता की भावनात्मक उपस्थिति मिलती है, यानी कि इमोशनल साथ मिलता है आपका, वो बड़े होकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है और साथ साथ भी, लेकिन बचपन के वो पल जो अपने गंवाए वो कभी वापस नहीं आते। बच्चों को अपना वक्त दीजिए, सामान ज़्यादा नहीं।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
3: इसी म्यूजिकल योर्स पर आप लोगों के बीच बना हुआ हूं मैं आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हां, ब्रेक फ्री म्यूजिक चल रहा है और बातें चल रही हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी और उतनी ही ज्यादा दोस्ताना भी, हिम्मत देने वाली भी। स्पिरिचुअल दृष्टि यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि इंसान केवल शरीर नहीं, मन बुद्धि और आत्मा का संतुलन उसका जरूरी है। इसलिए अपनी बॉडी अपने शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहे तो जीवन खुशहाल होता है। WHO और वैज्ञानिक रिसर्च ने ये माना भी है कि मानसिक स्वास्थ्य को हेल्दी लाइफस्टाइल का आधार माना जा सकता है और अध्ययन के विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आया कि लंबे वक्त तक मानसिक तनाव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को कमज़ोर बना देता है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि मन अस्वस्थ है तो शरीर भी लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। बस शरीर की चोट दिखाई देती है, मन की चोट अक्सर मुस्कान और मौन के पीछे छुप जाती है। जब दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या और अपराध बोध जैसी भावनाएं लगातार दबाई जाती हैं तो बस परेशान मत होइए, ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, अच्छा सोचिए और मन की चोट का भी इलाज करते रहिए। लेकर आता हूँ आप लोगों के पास और भी प्यारे प्यारे से गीत। जी हाँ, मेरे साथ आप सब लोग जुड़ चुके हैं, मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप अपने मन का इलाज कैसे करते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। 8657661071 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ कॉल्स आ रहे हैं वो भी मैं ज़रूर पिक करूँगा। रजनीकांत जी, पंकज मोहर, राजेंद्र परमार, शुभलक्ष्मी, अंकित, विजेंद्र, दीपा, प्रकाश शिंदे, प्रमोद, अशोक, फिरोज, बाबा, स्नेहा, श्रीधर और भी बहुत सारे लोग सभी हैं मेरे साथ। अब पेश करता हूँ ये गीत।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। म्यूजिकली योर्स पर बना हुआ हूं आप लोगों के साथ मैं आपका हमराज आरजे अभिनव। क्या आपने भी ये सोचा है कि सुबह उठने के बाद कभी आप सबसे पहले किस चीज को छूते हैं? अपने रिलेटिव्स को, अपने प्रियजन को, या अपनी किताब को, या अपने मोबाइल फोन को? कुछ वक्त रुकिए, सोचिए। आज हम सब लोग एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में यानी कि इनविजिबल केज में आ चुके हैं जिसकी सलाखें जो हैं वो लोहे की नहीं है बल्कि डिजिटल हैं। इस पिंजरे का नाम है सोशल मीडिया, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी मर्जी से जीते हैं लेकिन फिर बाहर निकलना भूल जाते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स और फेसबुक के नोटिफिकेशन, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि हमारी मानसिक शांति को निगलने वाले कुछ आजकल उपकरण भी हैं। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी है, कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, लेकिन आपको इसका एडिक्ट नहीं होना है, आपको इसकी आदत नहीं लगानी, आपको इसको उतना यूज़ करना है जितना आपको ज़रूरत है। हम कनेक्टेड तो बहुत हैं लेकिन अंदर से हम उतने ही अकेले अलोन होते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा कि इस लत के शिकार हम क्यों होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब भी कोई लाइक, कमेंट या शेयर मिलता है तो हमारे दिमाग में जो डोपामाइन है वो एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो किसी और भी चीज़ से निकलता है जिस चीज़ का हमें एडिक्शन होता है। सोशल मीडिया कंपनी हमारे इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाती है, ये हमें एक लूप में फंसाती है और हमें अगली रील्स देखने के लिए मजबूर करती है क्योंकि हमें हर पल एक नए रोमांच की तलाश होती है। अब पेश करता हूँ एक और गीत, जब मिला तू। आपको भी अगर कोई मिल गया बारिश में तो बस उसको बता दीजिए, और अगर मैं तो मिल ही गया हूँ यहाँ पर जो हर बार मिलता हूँ, तो मुझे मैसेज कीजिए, नंबर आपके पास है 8657661071। स्टे ट्यून्ड, बी विद मी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours
3: जी हाँ, ब्रेक फ्री म्यूजिक पर आप लोगों के साथ मैं हूँ, आपके साथ बना हुआ हूँ, यानी कि शो में हूँ। जी हाँ, आपके दिल के पास तो हुई आपका हमराज आरजे अपना हूँ। मेरे क्वेश्चंस के जवाब में जो मेरा सवाल था कि आप अपने मन को किस तरह से शांत करते हैं, मन का इलाज, मन की चोटों का इलाज कैसे करते हैं। मुझे पंकज मौट जी ने कहा है कि सर जी, मैं तो ज़्यादा किसी बात का ज़्यादा तनाव नहीं लेता हूँ और अपने मन की खुशी के लिए ज़्यादा अच्छा गीत संगीत और आरजे की मीठी प्यारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, थैंक यू सर। और प्रकाश शिंदे कहते हैं कि मैं प्राणायाम करता हूँ, कॉमिक किताबें पढ़ता हूँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुमधुर संगीत सुनता हूँ। और ऐसा ही कुछ प्रमोद जी ने भी मुझे कहा है। और आप सभी लोगों के लिए कमाल की बात तो यह है कि पहले पहले से आपके आंसर्स आते हैं, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ और प्ले करूँ। सो हमारा ध्यान अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि हम 5 मिनट की कोई गंभीर बात सुन नहीं पाते हैं। और रिसर्च बताती है कि दुनिया भर के युवा यानी कि यूथ, हालांकि मैं भी उनमें एक हूँ, आज प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप दिन के 4 घंटे इस केज में रहेंगे तो आप अपनी असल जिंदगी में अपने सपनों को, अपने परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं। काम के लिए वक्त बिताइए और थोड़ा बहुत मनोरंजन करिए, लेकिन उसके एडिक्ट मत होते जाइए। अब जब मिला तो के बाद आप किसी ना किसी से मिल ही लिए, ऐसे ही अनजानी राहों में लेकर आता हूँ आप लोगों के पास और भी प्यारे प्यारे से सॉन्ग।

0: आकाशवाणीच्या कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी अंतर्गत कार्यक्रम निर्माते आणि निर्मिती संस्थांकडून सर्जनशील आणि दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी https://prasarbharati.gov.in/NIPP या वेबसाईटला भेट द्यावी. शेवटची तारीख आहे 31 जुलै 2026.
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं. अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/NIPP वेबसाइट पर जाएं. प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: बनाऊँ आप लोगों के साथ यहाँ पर ब्रेक फ्री म्यूजिक में आपका हमराज आर जेवन है। बस अब कुछ वक्त रह गया है और उसके बाद आप लोगों के पास लेकर आऊँगा नेक्स्ट शो। चंद्रिका सेन ने मुझे लिखा है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ और म्यूज़िक सुनती हूँ और इससे मैं अपने मन की चोटों को यानी कि तनाव को कम कर देती हूँ। और संजय दर्शन, नितिन स्वामी, विजेंद्र घाटोल, इन सब लोगों ने भी मुझे लिखा है और इन्होंने इस बात का जवाब भी दिया और साथ साथ इनको हमारा शो सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये लोग ये बता रहे हैं। और अब आप सभी लोगों के लिए और चंद्रिका सेन के लिए मैं ये गीत पेश करता हूँ जिन्होंने इसकी फरमाइश की थी।

नमस्कार और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, खिलाड़ी विकास आदि विषयों पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात की। मुंबई में कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और भारी बारिश के बाद शुक्रवार यानी कि आज सुबह तेज धूप निकली। आईएमडी ने हालांकि शुक्रवार को दिन में शहर और उपनगरों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। दूसरी ओर मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सातों जलाशयों में लगातार हो रही जोरदार बारिश के कारण पानी बढ़ गया है। फिलहाल कुल उपलब्ध जल भंडार 7,03,260 मिलियन लीटर तक पहुंच गया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाकिस्तान स्थित बैकानूर कॉस्मोड्रोम अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होंगे। मिनियापोलिस में यूक्रेनी और भारतीय प्रवासी माता पिता के घर जन्म में मेनन आपातकालीन चिकित्सा के चिकित्सक और अमेरिकी अंतरिक्ष बल में कर्नल हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। यह पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस 4 दिवसीय टेस्ट मैच के लिए रिकॉर्ड 33,000 से अधिक लोगों ने पहले ही अपनी सीट बुक करा ली है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: और इस म्यूजिकल योर्स में हूं मैं आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अभिनव। दोस्तों दोपहर का वक्त है और अब वक्त है संगीत के साथ थोड़ा सुकून, थोड़ी ताजगी और ढेर सारी अच्छी फीलिंग्स का। अभिनव आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे और चाय हो या कॉफी या फिर म्यूजिक का स्वाद अगले एक घंटे तक हम लोग हैं आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले खूबसूरत इस गीत के साथ। सुकून तो रहेगा लेकिन सुकून की शुरुआत थोड़े से प्यार से इस धवाल के साथ करना चाहता हूँ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: कैसी लगी मेरी ये बावरे वाली शुरुआत, आप लोगों को प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104.4 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। है म्यूजिक कैफे, यानी कि जहां पर कॉफी के साथ आप म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। मतलब चाय के साथ भी, जरूरी नहीं कि कॉफी के साथ हो भाई, पर म्यूजिक कैफे की गाड़ी ऐसे चलती है। चाय हो कॉफी, संगीत का स्वाद तो रहना ही चाहिए। अच्छी धुन और अच्छी यादें कहते हैं कभी पुरानी नहीं होती, यही तो है म्यूजिक का जादू, संगीत का जादू। जी हाँ, मुझसे आपने 90s के कुछ गीत की फरमाइश की है, जरूर वो भी लेकर आऊंगा एक के बाद एक, बैक टू बैक। लेकिन सबसे पहले अब अगर आपको किसी की याद आ रही है तो लेकर बिन तेरे बाद में लेकर आता हूँ, पहले बहरा लेकर आता हूँ, क्योंकि भाई बहारों का मौसम है, बारिश का मौसम है, बहरा ना है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पेश करता हूँ अगला गीत, बहरा।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप लोगों के साथ इस म्यूजिक कैफे में, अगर आपका लंच ब्रेक चल रहा है तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा इन बेहतरीन गीतों के साथ। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जहां सिर्फ म्यूजिक बोले, संगीत बोले और हम उसे बस महसूस करें। बैक टू बैक आप लोगों के पास कुछ गीत लेकर आऊंगा और 12:30 बजे आप लोगों के पास से लूंगा छोटा सा ब्रेक और आऊंगा आप लोगों के पास 1 बजे वापस, क्योंकि भाई एक शो भी है, एक और प्रोग्राम है, यानी कि यहीं पर है आप लोगों के लिए। अब पेश करता हूं बैक टू बैक कुछ गीत, रुक जाना नहीं, पार्ट वन और पार्ट टू। ये है एक गीत बाबा दादर से हैं, उन्होंने फरमाइश की थी, और ओमकार जी के लिए एक और ये गीत था गोरी तेरी आंखें। बैक टू बैक आप लोगों के पास लेकर आऊंगा और आप सभी लोगों के लिए ये गीत।

आप लोगों के बीच बीच में मेरे पास कॉल्स आते हैं और आप लोगों से बात होती है, जरूर अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। और मुझे भी लगता है कि आप लोग लगातार सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है हमारा शो म्यूजिक कैफे, जरूर बताइएगा। बात करने के लिए तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं ही, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जस वहां पर सब कुछ शांत रहे और खामोशी गुनगुनाने लगे। आप सुन रहे म्यूजिक कैफे, उम्मीद है कि आपका दिन संगीत के साथ और भी खूबसूरत बन रहा होगा और म्यूजिक कैफे में बना रहूंगा आप लोगों के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं हूं अभिनव, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और संगीत को हमेशा अपने दिल के करीब रखिए। लेकर आऊंगा आप लोगों के पास हिट एंड हॉट, तब तक बैक टू बैक कुछ और गीत लेकर आता हूं। गोरी तेरी आंखें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए, इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का

0: आभास होता है।
1: श्रोताओ एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है।

इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं, जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार, गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो,
1: अरे जाओगे, अरे भागो, अरे अरे सिपाही आगे, अरे अरे भागो, जाओगे,
0: जाओगे,
1: जाओगे, चुप रहो, चुप रहो,
0: अरे मैंने कुछ नहीं किया,
2: अब आया कब?
3: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर, बढ़े चलो,

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डट कर मुकाबला किया।

परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
5: सबर करो साथियों।
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: हाँ, महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: धन्य हो आचार्य।
6: धन्य हो
5: आचार्य।
6: धन्य हो।
7: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: इसी म्यूजिकली योर्स पर बना हुआ मैं आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, और अब वक्त हो चला है हिट एंड हॉट का, जहाँ आपको पता है कि एक्चुअली कुछ सवालात भी होते हैं, लेकिन सवालात के साथ आप लोगों के एक्चुअली मनपसंद गाने भी आते हैं। तो पैर अब पूरे रंग में है और अब बारी उन गानों की जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गाने हैं। मैं हूँ अभिनव और शुरू हो चुका है हिट एंड हॉट। अगले घंटे तक सुनिए एक से बढ़कर एक सुपर हिट और चार्टबस्टर गाने। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला गीत, और आज हमारे कुछ लिसनर्स की शादी की सालगिरह भी है, उनमें से एक है प्रकाश शिंदे, और उनका एक गीत उनके लिए पेश करता हूं, दूल्हे राजा से दूल्हे राजा।

राजा की इस जय के साथ ही अब आगे बढ़ता हूँ और यहाँ है हिट एंड हॉट। यही तो हिट गानों की बात कि एक बार सुनो तो दिल बार बार सुनना चाहता है। और चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। संगीत का असली मजा तब है जब हर अगला गीत पिछले से भी ज्यादा पसंद किया जाए। शुभलक्ष्मी जी ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी, लेकिन उसके पहले मैं लेकर आता हूँ फिरोज शेगनपुरिया जी का ये वाला एक गीत जो मेरे पास है और जो कि है भीगी भीगी रातों में

0: आकाशवाणीच्या कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी अंतर्गत कार्यक्रम निर्माते आणि निर्मिती संस्थांकडून सर्जनशील आणि दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी https://prasarbharati.gov.in/NIPP या वेबसाईटला भेट द्यावी. शेवटची तारीख आहे 31 जुलै 2026.
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं. अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/NIPP वेबसाइट पर जाएं. प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
2: आपको बताया कि गीतों की फरमाइशी होती है, और अब मेरे पास है कहां से आए बदरा, यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, और फरमाइश की थी अरुणा जी ने.

अगले कुछ गीत आएंगे आप लोगों के पास बैक टू बैक, और अब मेरे पास है तोता मैना की कहानी, और इस गीत की फरमाइश मुझसे की थी विजेंद्र जी ने।

और बैक टू बैक मेरे पास हैं तीन गीत और एक गीत है मेरे पास शुभ लक्ष्मी जी के लिए पिया बिना, और उसके बाद है अजय जी के लिए तुमसे ही दिन होता है, और बाकी मिंटू हरजिंदर राकेश माथुर हितेंद्र दिग्दर्शन सत्यनारायण और आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे गीतों की फरमाइश की थी, दीपा पालकर भी, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, तो ये सारे के सारे गीत अब आप लोगों के पास लेकर आऊंगा बैक टू बैक। और कैसा लगा हमारा शो अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ यहाँ पर 107.1 MHz FM रेडियो मुंबई पर। आता हूँ आप लोगों के पास अगले शो में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है।

0: इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डिझाईनचा
1: नवरा नवरीचा.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 5:02 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों लव यू ज़िंदगी इस प्रोग्राम में हम अक्सर ज़िंदगी के छोटे छोटे महीन से महीन लेकिन उतने ही अहमियत भरे पहलुओं पर बात करते हैं। ऐसे पहलू जो हमारे सामने तो होते हैं, हम जिनके रूबरू तो होते हैं, जिनका एहसास तो हमारे दिल में होता है, हमारे मन में होता है, हमारे मस्तिष्क में उसे हम महसूस तो कर सकते हैं। ये कुछ तो है, ये समझ में तो आता है, लेकिन ये क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, हमारे हमारे सोच विचार पर इसका क्या असर पड़ता है, ये शायद ही हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन जब इस पर विस्तृत रूप से बात होती है, कुछ बहुत ही खूबसूरत गीत, कुछ बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जब इनकी याद, इनका एहसास हमें दिलाते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये महीन से महीन एहसास, ये भावनाएं भी हमारे जीवन में हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं।

नदाई पहलू होता है बंधन का। कभी किसी के साथ रिश्ते के बंधन में हम बन जाते हैं। रिश्तों के नाम तो बहुत सारे हैं, कई अनगिनत रिश्ते। घर के अंदर हमारे खून के रिश्ते, घर के बाहर दहलीज के बाहर जब हम अपना अस्तित्व सिद्ध करने जाते हैं तब बनने वाले अनगिनत रिश्ते। रिश्ते वैसे बहुत सारे हैं, उनके लिए वक्त का दायरा कभी कभी सिद्ध होता भी है और कभी कभी नहीं भी। इस वक्त के दायरे के परे भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते, ऐसे बंधन जिनकी वजह से हम बंध जाते हैं। कभी अपने आप बंधते हैं, कभी हम उन्हें बांध लेते हैं, और कभी कभी हमें मजबूर किया जाता है उन बंधन में बंधने के लिए। हर बार हमारी भावनाओं का जो सैलाब है एक अलग ही आवर्तन में रहता है। इस सैलाब को, इस भावनाओं के विवर्त को जब हम महसूस करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है क्या है ये बंधन, अच्छा बुरा, मन भावन या मन जिसे तिरस्कृत करता है, ऐसा कुछ।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

दोस्तों, ये जो बंधन होते हैं ना, बड़े अजीब होते हैं। अगर इनका झुकाव आपके मन मुताबिक हो, सब कुछ जैसा आपको चाहिए वैसा हो, तो ये बंधन बड़े अच्छे लगते हैं। और यदि इन बंधनों को आप अपनी गुलामी की बेड़ियां समझने लगें, तो बस ये बंधन आपके लिए बहुत तिरस्कृत हो जाते हैं। वक्त वक्त की बात है, दृष्टिकोण का हेर फेर है, लेकिन जब ये बंधन सर चढ़कर बोलने लगते हैं, तो ऐसे लगता है कि इनसे दूर मुक्त स्वैर स्वतंत्र जीवन ही बहुत सुंदर है। लेकिन जब हम स्वतंत्र रहने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे अंदर की हूक होती है, जो हमारे अंदर की भूख होती है, जो हमारे अंदर एक चाह होती है कि कोई एक रिश्ता ऐसा हो जो हमारे दिल के करीब हो, उसके लिए फिर ये बंधन ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई एक ऐसी बहुत ही सुंदर सी जेल है जहाँ से कभी कोई निकल ही ना पाए। एक बहुत खूबसूरत सा गीत इस वक्त मुझे याद आ रहा है, रजनीगंधा फिल्म का ये गीत है, लता दीदी की आवाज़ है, कवि योगेश के बोल है, और इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस बंधन को पुरस्कृत किया है, उसे विशेष रूप से अपने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। ज़रा सुनिए, फिर आपको भी ऐसे लगेगा कि हाँ, सचमुच में बंधन इतना सुंदर हो सकता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

रिश्ते, बंधन, ये जो सारी बातें हैं, ये कभी कभी जिंदगी में बहुत सारे पेचीदा से प्रसंग लाती हैं। हालांकि बंधन एक बहुत अलग चीज है, लेकिन रिश्तों में उनका होना बहुत जरूरी है। इन दोनों में समानता इतनी है कि अगर इसमें आप मन लगा दो तो ये बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। अगर यहां से मन हट गया तो रिश्तों में जो बंधन है वो बोझ लगने लगते हैं, ऐसे लगता है कि हम कैदी बन गए हैं। लेकिन यही रिश्ता अगर मन से, दिल से लग जाए तो ये बंधन बड़ा प्यारा लगता है। फिर ऐसे लगता है जैसा कवि योगेश कहते हैं कि कितना सुख है बंधन में। और फिर इस जीवन में तो क्या, अनंत जीवन तक हम ऐसे बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं।

ये बंधन जब तक आपके जीवन को सवार रखते हैं तब तक ये बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन रिश्तों में, इन बंधनों में बंध कर भी आपको ये ज़रूर सोचना है कि ये जो बंध गए हैं वो आप नहीं हैं। आपका तो मूल रूप है एक मुक्त पंछी की तरह। हाँ, ये रिश्ते, ये बंधन ज़रूर हैं आपके लिए, सिर्फ जीवन संवारने के लिए। एक बार ये मोह माया का बंधन जब छूट जाता है तो ऐसे लगता है कि ये मुक्त गगन सिर्फ हमारे लिए है।

बजकर 2 मिनट हो रहे हैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर। इसके पश्चात ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 6:15 पर हमारी आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी अंदाजे बयां कार्यक्रम में। सुनते रहें FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और हाँ, यदि आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अब भी डाउनलोड कीजिए और जल्दी से हमारे प्रोग्राम सुनिए। शाम के 6:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाजे बयां। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार।

शेर व शायरी की जब बात चलती है तो एक मीठा सा एहसास कानों के जरिए दिल को छू जाता है। इन शब्दों में ऐसी जादूगरी होती है और इससे निकलने वाला जो एक ऑरा होता है, या फिर यूँ कहिए कि उनको सुनने के बाद जो हमारे दिलों का हाल होता है, उसे बयां करना जनाब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने इन एहसासों को इतनी आसानी से बयां नहीं कर पाते। बहुत खूबसूरत एहसास ऐसे शब्दों को सुनने के बाद, ऐसे शेर व शायरी को सुनने के बाद मन में हड़कंप तो ज़रूर मचाते हैं, पर उन्हें बयां करने का हर एक का अपना तरीका हो सकता है। लेकिन सबसे खूबसूरत अंदाज, सबसे खूबसूरत तरीका इन शायरों का होता है जनाब,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

इन शायरों को जब ये पूछा जाता है कि भाई इतने खूबसूरत अंदाज में इतने सटीक रूप से आप कैसे लिख पाते हैं, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है यह आपको कैसे समझ में आता है और इसे शब्दों में पिरोना, ये कला आपने कहाँ से सीखी? तो बहुत सारे जो शायर हैं वो यही जवाब देते हैं कि उन्हें ये शब्द, ये एहसास किसी शख्सियत के रूप में नज़र आते हैं, चलती फिरती शख्सियतें, और ये उनसे बातें करती हैं और फिर वो जो बात होती है बस शब्दों में बयां हो जाती है और बन जाती है खूबसूरत शायरी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

6:53 हो रहे हैं दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की ओर। लेकिन हमारा जो अगला कार्यक्रम है, जी हाँ, 7:10 पर हमारा अगला कार्यक्रम होगा हम तुम, जिसमें जी हाँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें आपकी फरमाइश है हम पूरी करते हैं। तो चलिए, जो नए श्रोता हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, इस कार्यक्रम में अगर आप सहभागी होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको आपके पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, हो सके तो आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें मैसेज करनी है। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ये सारी जानकारी हमें जल्द से जल्द मैसेज कीजिए।

अब से कुछ ही देर बाद ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और तत्पश्चात होगा कार्यक्रम हम तुम। आप सुनते रहें FM रेन।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और यदि अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। सेटिंग्स में जाइए और FM रेनबो सिलेक्ट कीजिए मुंबई का और ये कार्यक्रम इस वक्त ज़रूर सुने। शाम के 7:11 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ये कार्यक्रम आपका पसंदीदा है और इसमें आपकी फरमाइशें पूरी होती है। अगर आपको भी इसमें सहभागी होना है तो क्या करना है, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। आपको करना ये है कि जो आपको गीत सुनना है, जो आपका पसंदीदा गीत है, उस गीत के बोल, फिल्म का नाम, आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें 8657661071 इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से दोहराए देती हूँ, 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपनी जानकारी तुरंत मैसेज कीजिए और फटाफट से हमें मैसेज कीजिए। और याद रखें, जो पहले मैसेज करेगा उसका गाना, उसकी फरमाइश पहले यहाँ पर सुनाई जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

अगली फरमाइश हमें भेजी है दीपा पालकर जी ने। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का श्रेया घोषाल और अरिजीत का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहती हैं।

अगली जो फरमाइश है वो है गुरु फिल्म से एआर रहमान और साथियों का गाया हुआ ये गीत। विट्ठल मुंगसे जी ने ये फरमाइश हम तक पहुंचाई है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: चिच्चोर फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत येसुदास का गाया हुआ और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी अशोक पाटिल जी ने वर्ली से। अगली जो फरमाइश हम तक पहुंची है वो अनोखी अदा 1972 वाली अनोखी अदा फिल्म से है। किशोर दा का गाया हुआ ये गीत सुनना चाहते हैं पंकज मोहन जी। वो कह रहे हैं आज सुबह से मैंने बहुत सारी फरमाइशें भेजी हैं लेकिन अभी तक मेरी एक भी फरमाइश पूरी नहीं हुई। पंकज जी आप चिंता ना करें, आपकी ये फरमाइश चलिए हम पूरी कर रहे हैं।
1: न पूछो सनम आपका।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पुणे से राकेश माथुर जी, असली नकनी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत सुनना चाहते हैं।

अगली फरमाइश प्रकाश शिंदे जी ने भेजी है। उन्होंने मायशुक फिल्म का ये गीत चुना है, वो गीत इन्हें सुनना है, और साथ ही साथ जानकारी भी भेजी है। मायशुक फिल्म को आज रिलीज हुए 34 साल पूरे हुए हैं। 10 जुलाई 1992 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। धन्यवाद प्रकाश जी, अच्छी जानकारी आपने दी। चलिए सुनते हैं आपकी ये फरमाइश।

दोस्तों 7:50 हो रहे हैं, कार्यक्रम समाप्ति की ओर बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंची हैं, लेकिन अफसोस के आप जानते हैं एक घंटे के प्रोग्राम में इतनी सारी फरमाइशें हम नहीं सहभागी कर सकते, इसलिए बहुत बहुत आप सभी को सॉरी कहते हुए अंतिम दो फरमाइशें आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि अगला कार्यक्रम होगा रॉक विद जॉक शीन के साथ, वो स्टूडियो में आ चुकी हैं। तो चलिए अंतिम दो फरमाइशें आपको सुनाई देते हैं। अब जो गीत आप सुनेंगे किशोर दा का गाया हुआ ब्लैकमेल फिल्म का, ये गीत आप सुनेंगे और फिरोज सिंगापुरिया जी ने ये फरमाइश हम तक भेजी है। इसके पश्चात दत्ता केदार जी पंढरपुर से सुनना चाहते हैं परदेसी बाबू फिल्म से आनंदराज आनंद का गाया हुआ गीत। तो चलिए बैक टू बैक ये दोनों गीत आपको सुनाए देते हैं और अब माया आपसे कार्यक्रम से विदा लेती है, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। शुभरात्रि, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता

उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम

0: मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत

0: समारोह में
1: रक्षण और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना कल विशाखापत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

और वो समय जब घड़ी की सुई टिक टिक कर हमें कह रही है कि हम आपसे लें इजाज़त, पर आपको रेनबो से जाने की इजाज़त नहीं है। खूबसूरत गानों का ये दौर अभी जारी है, तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मुझसे आपकी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की कभी कभी बेसुरी सी हो जाने वाली धुनों पर। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय बाय।

आरा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है।

ये आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राज मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील

ब्रिगेड महेंद्र गिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण तथा 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां खोली। 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां पास हुई। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई में एक निजी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ 133 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा। स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:04 हुए हैं। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म मंजिल से।

किशोर कुमार के गाए इस खूबसूरत से गीत के बाद अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चुपके चुपके से।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिर कब मिलोगे फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, ये बोल है उस गीत के जो अभी आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है कल आज और कल।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के

अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कलाकार फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बहारों के सपने, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

छलिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे गा रही थी लता मंगेशकर। और अगला गीत है छोटे नवाब फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मुकेश को आइए सुनते हैं फिल्म अन्नदाता में।

और दोस्तों जीरो आर शो प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत।

एक बजे है, आप सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्केट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टेथ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सितर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्यूरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में सिन्हा ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच और ज्यूरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फरारी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पेन और बेल्जियम के बीच जारी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:02 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुहानी रात, इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए, जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वोंग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक में भुलाए ना बने।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये रातें ये मौसम

3 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस समय के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड से के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित 6ठे स्वदेशी शेल्ड फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर रेल सेवाएं प्रभावित। सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक 22 नियमित और 8 विशेष ट्रेनें रद्द की। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था। अब सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित 6ठे स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग के अगले तीन से चार दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी के रेनबो चैनल से आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।
1: Thank you.

0: लगी लगी।
1: ओ ले, पेट्रोल ते पवाए नहीं। कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: डील बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
4: दोनों डील कर
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।